सिर्फ मिठियां ही स्वीट चीजा ही नहीं, और बहुत सारी चीजा जो प्यारियां लगदियां स्वादलियां लगदियां कहते मिठियां समझ के उन्होंने खाया पर कौड़ा उपजा साग पर उन्होंने रिजल्ट जो है अखीर दे जाके वो स्वाद कौड़ा निकले उस दे चुकड़तन निकली शरीर ने ही वह बीजिया पर शरीर में ही वह भोगना पै गया भोगंग तरोगंग शरीर ने ही भोगां की मौज माणी पर शरीर नू हुण रोग भी सहने पैने हैं भोगंग तरोगंग जितने ज्यादा भोग उतने ज्यादा रोग जितने ज्यादा डिशेज उतने ज्यादा डिजीज गुरु बाबा जी कहते हैं ये तन मेरा कोई सफला करता है वरना इस तन दे नाल मैं रोग अते दुख अते पेन ही ग्रो करता हां वो खुद मैनू खानी पैंदी है उदो बड़ी तकलीफ हुंदी है। महाराज जी एक जगह होर बाणी चाकदे हैं कहते हैं जे सौ वरिया मिठा खाए कहते हैं

जितने भी शरीर वे रस हैं उतने ही दुख लगते हैं। इस करके महाराज जी ने एक पंक्ति दे विच गृहस्थियों खास करके गृहस्थियों यह समझाया है कि जे तुसी गृहस्थी हो तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुहानू अकाल पुरख वाहिगुरु ने जां सतगुरु ने एग्जेम्पशन दे दित्ती है कि हुण तुसी जो मर्जी खाओ पियो भोगो रस माणो। नो, तुहानू भी योगियां ऋषियां मुनियां वाली ही साधना तपस्या करनी है भावें तुसी गृहस्थी हो, क्योंकि असीं कई दफा सोच लैंदे हां ना कि असीं तां गृहस्थी लोग हां, असीं कोई साधु संत थोड़ो, अपने आप में आप ही एक्सक्यूज कर लेने हैं कि साड़ी सोशल लाइफ भी है, असी गृहस्थी हाँ। हुण गुरु साहब गृहस्थी किसनू कहिंदे हन ये नहीं असी सुनिया, यह नहीं असी सुने, असी सिर्फ इन्ना ही सुने है कि गुरु बाबा नानक देव जी महाराज ने गृहस्थ धर्म नू बहुत उच्चा आख्या, ऐ सुने, ठीक है ना कि गुरु नानक साहब महाराज ने गृहस्थ धर्म नू प्रवान किया, पर किस किस्म दे गृहस्थ धर्म नू प्रवान किया ए दसना भी मुश्किल है, इस नू मनना भी बड़ा मुश्किल है, तो सानू शायद किसी ने दसिया भी ना होगा। गुरु बाबा जी दसते हैं कि ए गृहस्थी, जे तू सोचे कि गृहस्थी होने के नाल तेनू एग्जेम्पशन मिल गई है कि तू हुण बॉडी दे लैवल दे उत्ते रह के सारे बॉडी दे रस जो टेस सन उन्हां नू माणी जा, तेनू कोई तपस्या करन दी कंट्रोल करन दी अपने उत्ते कोई मास्टरी करन दी लोड़ नहीं है, क्योंकि चूं तू गृहस्थी है इस करके यू आर अलाउड, वे कहिंदे ऐसी गल नहीं। हुण पंक्ति सुनने वाली है बहुत प्यारी, कहिंदे

है गृहस्थी, इसके अर्थ सुनो। सो गृही जो निग्रह करे, कहते गृहस्थी वो है जो निग्रह करे। निग्रह का मतलब, निग्रह का मतलब है कि अपनिया इन सेंसुअल प्लेजर्स के उत्ते अपनी मास्टरी अचीव करे, इन्हों का मास्टर बने, इन्हों उत्ते काबू पाए, इन्हों उत्ते कंट्रोल करने का अभ्यास करे। बेशक आहिस्ता आहिस्ता करे, आहिस्ता आहिस्ता करे, पर एक दिन ऐसा उसके जीवन दे विच आए कि वह उन्हां इंद्रियां दे रसां दा गुलाम न रहे। क्योंकि जो इंद्रियां दे रसां दा ही गुलाम रह गया, वह शरीर दे ही तल ते रह गया, वह शरीर तो बॉडी तो अगां इवॉल्व नहीं होया। जो बॉडी तो अगां इवॉल्व नहीं होया, उसनूं दोबारा फिर बॉडी दे विच पाया जाएगा। वह फिर जन्म मरण दे विचों गेट चो मुक्त नहीं होया, द्वारा उसे ही गेट दे विचों फिर आ जाएगा। और यह भी पता नहीं किस किस्म की बॉडी च पाया जाएगा, यह भी कोई पता नहीं ना। जो शरीर दे लैवल ते अपनी लाइफ नू एंड करता है, दैट विल कम बैक इन टू द फॉर्म। तो महाराज जी आखते हैं सो गृही, ओ गृहस्थी है जेड़ा गृहस्थी हुंदिया होया, गृहस्थी विच रहिंदिया होया की प्रैक्टिस करे, अपनिया इना इंद्रिया दे तमाम रसा नू मास्टर कर ले, कंट्रोल च कर ले, काबू च कर ले, ते इना नू जित ले। सो गृही जो निग्रह करे। अगली गल, जप और तप। जप इज मेडिटेशन, नाम सिमरन। तप है अपने जीवन दिया, अपने बिहेवियर दिया तमाम जो जो लो नेचर दे जो साडे सुभा हन, जितनी भी साडी लोअर नेचर है, पशुआं वाले सुभा हन, अपने आचरण नू, अपने बिहेवियर नू, अपने लाइफ स्टाइल नू तब्दील करन दी तपस्या करे, तपस्या करे। तो नंबर एक, इंद्रियां उत्ते इना दे रसां कसां उत्ते काबू पाउण दा अभ्यास करे, ए तप करे। दूसरा, अपने आचरण अपने कर्मां नू निर्मल बनाण दे वास्ते तपस्या करे, जप तप संजम, अते अपनी जिंदगी च संजम लियावे। संजम दा मतलब, संजम दा मतलब कि ओ अपनी नीड्स नू घटावे, अपनी नीड्स नू अननेसेसरी ना बधाई जाए। पदार्थां नू देख के मार्केट दे विच, बाजार दे विच जो कुछ भी एडवरटाइज किया जाता है, यह जरूरी नहीं है कि उसनू उसने खरीदना ही। बहुत वाइजली अपनी नीड्स नू समझे, अते अपनिया नीड्स नू वद तो वद सादगी दे विच, सिंपलिसिटी दे विच रखने की कोशिश करे। यह है मतलब संजम दा, कि लाइफ नू बहुत होवे, बहुत ब्यूटीफुल एलिगेंट, पर बड़ी सिंपल होवे, बहुत सिंपल होवे, और ऐसी होवे कि जिसनू मेंटेन करन दे वास्ते उसनू दिन रात भटकना ना पवे। क्योंकि कई दफा सानू अपने एक्सपेंसेस पूरे करनू ही, अपने बिल्स पूरे करनू ही, सारा दिन रात सानू भटकना पैंदा है जस्ट टू पे अवर बिल्स। पर असी उतने क्रिएट ही क्यों करी। कबीर साहब ने आख्या है, सादा जीवन जियो। गृहस्थी वो है जिस दे जीवन दे विच कहिंदे जिहड़ा गृहस्थी जीवन दे विच बैठा होया इन्हां चीजां उत्ते कम करदा है, अपनियां इंद्रियां नू कंट्रोल करदा है, इंद्रियां दे स्वादां दे उत्ते ओह फतेह पाउंदा है, अते अपने आचरण नू ओह ओहदी तपस्या करदा है, अते अपनी जिंदगी च संजम लियांदा है। जप तप संजम भिख्या करे, इस गल दी ओह वाहिगुरु तो भिख्या मंगदा है। पुन दान का करे शरीर, कहिंदे ओहदा जिहड़ा शरीर है
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਭਾਵ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਲਵੇ। ਸੋ ਗਿਰਹੀ ਗੰਗਾ ਕਾ ਨੀਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਅਸਲ ਗ੍ਰਿਸਤੀ, ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨੀਰ ਤੋਂ ਵੀ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਜਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਾਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਉਸਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਾਓ ਇਸਨੂੰ।

फिर सच्चे ते सदा सुहागन। कहिंदे इह काया जदों तक फिर इस दे नाल है ये सुहागण है, अते जदों तक सुहागण है इसनू कोई आंच नहीं आ सकती, इसनू कोई गम नहीं आ सकता, कोई दुख नहीं आ सकता, उदासी नहीं आ सकती, क्योंकि फिर जो नाल है पति नाल है। पर कहिंदे अगर अपने जीवन दे विच इस काया रूपी कामणी नू इस दे पिर नालों विछोड़ दोगे, इस दे पिर तों दूर ले जाओगे, ये कहिंदे कुमला कुमला के मर जाएगी, ये उस विछोड़े नू सहार नहीं सकेगी, एक कुमला जाएगी, इसकी खूबसूरती टल जाएगी, ये बीमार पड़ जाएगी, ये उदास हो जाएगी, अते फिर ये पुकारेगी किथे गया मेरा साजन, किथे लै गए ये लोग मैनू, साजन देश विदेशी अड़े सानेड़े देंदी, सार संभाले तिन सजना मुंद नैण परहिंदी, ये मुंद ये जीव स्त्री ये रब दी कामणी इसदी अखां च फिर अथरू आणगे, ये फिर रोएगी, मुंद नैण परहिंदी गुण सारेंदी, उस पति नू मिलन दे वास्ते उस दे गुणा नू याद करदी है, अखां च इसदे अथरू हन, मुंद नैण परहिंदी गुण सारेंदी, क्यों प्रभ मिलां प्यारे, किवें अपने प्यारे नू वापस मिलां, क्योंकि इसनू भी तृप्ति नहीं आंदी, मुंद नैण परहिंदी गुण सारेंदी, क्यों प्रभ मिलां प्यारे, मार्ग पंथ ना जाणो बिखड़ा, क्यों पाईए प्रपारे, ना मैनू रस्ते दा पता है, ना पंथ दा पता है, रस्ते दीआं कठिनाइयां बड़ियां हन। ते कहिंदे हन इस जो सिमली नू देण दा अर्थ यह है कि यह जो शरीर है असी इसनू यह समझना है कि यह रब दी औरत है और इस दा पति इस दे अंदर है, अगर कोई इस शरीर नू इस दे पति तो अकाल पुरख वाहिगुरू तो दूर करेगा तो उस दे जीवन दे विच उदासी आएगी, विछोड़ा आएगा, गम आएगा, डिप्रेशन आएगा, दुख आएगा, अते रोना ही रोना आएगा, और कुछ नहीं आएगा, क्योंकि औरत नू उस दे पति तो विछोड़ दिता जाए तो होर की हुंदा है, कहिंदे ओह कुमड़ा आ जाएगी, वो मर जाएगी, उस तो बिना उसका जो जीवन है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सो तीसरा नुक्ता अज आप जी की सेवा दे विच रखिया है कि यह अकाल पुरख वाहिगुरु की कामणी है, अकाल पुरख वाहिगुरु की यह पत्नी है, यह उसकी औरत है, तो साडा अभ्यास की होना चाहिए है कि असी अपने इस तन नू जो कि रब की कामणी है कि वह वस्तुआं देिए जड़ियां इस नू वाहिगुरु तो दूर ले जान, वह वस्तुआं देिए जो इस नू गंदगी दे नाल भर दें, वह वस्तुआं देिए जो इसकी बुद्धि नू भ्रष्ट कर दें, वह वस्तुआं देिए जो इसकी बुद्धि दे विच बेहोशी लिया, इस नू असी बेहोश करिए, ऐसा गुनाह फिर माफ कित्ते कीता जाएगा, फिर साडा फर्ज बनता है यह रब की औरत है, इसनू जिस तरह रब ने बनाया उसे तरह ही इसी रख के संवार के शिंगार के इसनू उसकी दुल्हन बना के रखिए, उस दे विच कोई ऑल्ट्रेशन करने की सानू इजाजत नहीं है, क्योंकि डिजाइन जो इसका है जिस तरह की उसने चाहा है उसने आप बनाया है, यह उसकी औरत, अते हमेशा इसनू उस वातावरण दे विच रखिए ता कि एक काया रूपी औरत अपने पति दे पिर दे नेड़े रहे, वह वातावरण की है, वह है सत्संग, वध तो वध सत्संग हो, पर जितना असी इसनू सत्संग तो दूर ले जांगे उतना ही है अकाल पुरख वाहिगुरू तो दूर चली जाएगी, और जितनी दूर चली जाएगी उतनी ऐसा भी हो जाता है कि एक काया बहुत ही दूर गई गई फिर पिर नू भी भुलना शुरू कर जाती है, और जो अपने पिर नू ही भुल जाए पति नू ही भुल जाए उसका हश्र की हुंदा है, बहुत भयानक हश्र हुंदा है। सो एक एक नुक्ता इतना गहरा है कि गुरु साहब आखते हैं
ਇਹ ਕਾਇਆ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਇਹ ਵਸਤੂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕਾਮਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਬਸ ਅੱਜ ਇਤਨਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਦਾ, ਸਫਲੀ ਕਰਦਾ, ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣਾਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਦੇਂਗਾ। ਇਹ ਤਨ ਵੇਚੀ ਬੈ ਕਰੀ ਜੇ ਕੋ ਲੈ ਬਿਕਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਤਮ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿਸ ਤਨ ਨਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਨਾ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਤਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਤਨ ਨੇ ਵਿਕਾਰ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ, ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟੇਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸਟਰੀ ਅਚੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਭੀਖਿਆ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਭੀਖਿਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋ ਉਹ ਦਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਪ ਦੇ ਅਤੇ ਤਪ ਦੇ, ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਾ ਕਰੇ ਸਰੀਰ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੁੰਨਦਾਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਬਸ ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਪੁੰਨਦਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਜੋ 13 ਨੁਕਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ 13 ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਾਮਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸਦੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਗਰ ਵਿਛੋੜ ਦਿਓਗੇ ਇਹ ਕੁੰਬਲਾ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਮਰ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਰੋਏਗੀ, ਇਹ ਗਮਗੀਨ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਉਦਾਸ ਹੋਏਗੀ। ਫੂਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਕਿਵਾਂ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਾਓ।

संत जनो किवें उसे वाहिगुरु नू पाए ऐ सुहागणी मैनू भी दस मैं भी अपने पति नू खुश रख सका कोई ऐसा गुण दस ते मेरे हजूर पातशाह कहंदे ने आ मैं तैनू दसा सहज दा सिंगार कर सच्चा ते संतोख सच ते संतोख इन्हां दा सिंगार करके ते फिर बोल मिठा कदी कौड़ा ना बोल पति तेरे वस विच आवेगा। हजूर कहंदे ने

जवन काल सब जगत बनायो देव दै जतन उपजायो आद अंत एक है अवतारा सही गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिसी को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी सिवकन को सिव गुण सुख दियो सतरन को पल मोह बध कियो कट कट के अंतर की जान पले बुरे की पीर पछान चीटी ते कुंचर अस्तूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख

जब उन तर्क करा कर तारा परजा दर्द तब दे अपारा जब आकर कथो कबू तुम मैं मिलत दे तरसू जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे आप आपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहत दरालम जान भेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार लम आद अनिल अनाथ असम ताका मूड उचारत पेदा जाको पेव न पावत बेदा ताको कर पाहन अनमान महामूड

आप अपनी बुद्ध है जेती पर्ण भिन्न भिन्न तुहते तुमरा लखान जाए पसारा कह बिजा प्रथम संसारा एक कह रूप अनूप स्वरूपा रंग पयो राव कहीं पूपा अंड जेर जसेत जकीनी उत्पुष खान बहु रच दीनी कहूं फूल राजा है बैठा कहूं सिमट पयो संकरे कैठा सगरी सृष्टि दिखाए अचंपव आजगा स्वरूप स्वयंपव अवृच्छा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट।

जे अस्तुज तव सरणी परे तिनके दुष्ट दोख तह मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जोकल को एक बार ते आए हैं ताके काल निकट नि आए हैं रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरष्ट रहे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाए निहर हो ताके ताप तनक मोहर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब हुई दुष्ट छा छह सके न कोई एक बार जिन तुम्हें सवार काल पास ते तय उबारा जिन्नर नाम तहारो कहा।

ध्यान अंतर्गत तेज पुंज तेहु लोग परगासी देखत दर्श पटिक ब्रह्म पजित दुख पर हर सुख सहज बिगासें सेवक सिख सदा अत

सतगुरु नानक भगत करी एक मन तन मन धन गोबिंद दियो अंगद अनंत मूर्त निज तारी अगम ज्ञान रस।

जिन सतगुर सेव पदार्थ पायो निस बस हर चरण निवास ताते संगत सगन पाए पाओ माने तुम मलियागर

तू सतगुरु चौह जुगी आप आपे परमेश्वर सुर नर साधक सिद्ध सिख सेवंत तुरों तुर आद जुगाद अना

गुरु अर्जन देव पातशाह ये छबद दिया अखीरलिया तुकां विच अरदास कर दिया हे अकाल पुरख वाहिगुरु हे दीना बंधु दुख बंजन अकाल पुरख जियो दीन दयाल पूरन दुख पंजन तुम बिन ओट न काई हुण तेरे बिना कोई ओट नहीं कोई आसरा नहीं हुण तू ही सानू छडा सकदा है काढ लियो संसार सागर में नानक प्रभु शरण आई मैं तेरी शरण विच हां मैनू इस संसार सागर तो कट ले पार कर दे आओ अरदास करिए।

0: खालसा जी आओ सब तो पहला अमृत दे दाते सरबंस दानी कलगीधर पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा बख्शिया फतेह दा जयकारा बुलंद करो ते आखो गज के
1: वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

राग गौड़ी बैरागण विच ऋषभ दैवत कोमल दोवें निषाद अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस राग विच गंधार ते पंचम वर्जित हैं। इसकी जाति औड़व वादी ऋषभ संवादी दैवत अते समा सवेर दा है। मैं बंजारन राम की शब्द का गायन कर रहे हैं प्रोफेसर करतार सिंह।

निर्मोल कीरा आनंद गुणी गहीरा अनहद पाणी पूंजी संतन हथ राखी मरदाना के ये संबोध वस्तु से ना मुल पंज इस वस्तु का मुल पंज पर उन्होंने कीर्तन का पूरा नाम प्राप्त नहीं मन जिन्होंने कीर्तन नू रबी दास समझ के इसका आदर सत्कार किया है मरदाना उन्होंने चोरियां मालिक पर मरदाना यह की है महाराज एक सहित रुपये दिखाए अरुण कह लगे आप की करनी है मरदाने जा वापस दे महाराज आपू बना के मरदाने ने किया सदगुरु मसा मसा माया का मूह वेखे है ते तुसी कहें दे वापस अरुण कह लगे मरदाने आप किसे चुकी फिरा मरदाने ने कहा महाराज तुसी थोड़ा चुकनी मरदाना आप ही चुकी फिरेगा इतने जाओगे दो बड़े कीर्तन सुनावे हम तो कदे नहीं खवागा महाराज भुख लगी अलूर कह लगे जी महाराज अभी मालिक के हुक्म जिथे जावे मालिक आपे प्रबंध करेगा वापस दे बंदे कचू न बंदे पंछी से दरवेश और जिन्हों तकवा रब का तिना रिजिक गिरी गांधनी बांधते जवे देवता खाए गोविंद ताके पीछे जिन्हें मत भूखे दे एक सौ रुपये की छह भी वापस दिखती सात राजेंद्र और प्यार आया नौकर बुलाया घर का कोई रबी दूर आया है और सौ सौ के मन धरे है प्रसादे का थाल परोसना है मिठाई भी रखना है दुध का दड़वा भी भरना है कितना रुमाल पा के पूछा दे मैं दुकान बंद करके आऊंगा आप उस दादे के दर्शन करना अगर कब पहुंच गया सर्वा दिन के पदार्थ का थाल रखिया मथा टेकिया हजूर ने अमीर दिशी न टकिया सिर को नजर करम सिरकार नानक नदरी अगर कह दिए झोलियों पर उठिया मस्ती बैठा चाहते इधरों सासराए भी आए हजूर ने दर्शन किए मन खरे हाथ जोड़ के किया गरीब नवाज दुनिया में उतारना आया दुनिया नु दाता देने वाले मेरी झोली की है अदूर कह लगे सासरा की चाहना है पातशाह दुनियावी दाता सारी है हीरे दान पन्ने पुखराए धन दौलत सोना चांदी सब कुछ है पर गरीब नु आज सब कुछ होंगे अजे मन का खप्पा पूरा नहीं होया खोती ही बैठी मन नहीं हो गया मन संतुष्ट नहीं हो मन तो संतुष्ट ही नहीं हजूर कह लगे हां सारस राय मन का भोजन हो रहा है मन ही नहीं रहना मंत्र मन पदार्था नाल नहीं रहना गरीब राज फिर करो कृपा हजूर ने सोचिया जरा तकिए अंदरों बोलता है कि भर हजूर कह लगे सारस राय तू देरी नाल आया है जेड़ी दात सी ना वो तेरा नौकर ले महाराज फिर मैं हजूर कह लगे जे तो भी दात लेनी है तो नौकर के चरणा से कह ऐसी कसौटी इम्तहान देखना से भी अंदर निम्रता लैके होवे तां नहीं पर सास सराय दा जिहड़ा मन रूपी चोला सी ओ बिल्कुल सुधैर अंदर शरदा ते प्यार सी रो पिया हरी मनवाज ए तां मेरा बच्चा है पर जे तुसीं आखो तां मैं तुहाडे कुत्तिआं दे पैर च मारा सकदा ओ दास भक्त जिहदे नाल तेरे मन भी तुख दूर हो हजूर ने बख्शिश कीती सास सराय जरा नेड़े हो दात मिलन लगी है तुम भी मन करके मेरे हो जाओ बख्शिश होने लगी है हजूर ने सारस राय के सिर से फिर प्रयास रखिया अभी उसकी चीज नाल तकिया किया सारस राय जब सतनाम कर हुकुम मस्तक हथ हरिचो मार करियां बड़ियाइया सह सुखे नाम नाम की दात जो जो सारस राय सिमरन नाल जुड़ा है त्यों त्यों मन सुखी हो जाए सिमर सिमर सिमर नाम जीवा तन मन होए निहाला चरण कमल तेरे तो हित पीवा मेरा सतगुरु तो अज सारस राय दिन झोलियों भर दिखिया मेरे सतगुरु नानक ने क्यों ना भरे अज खास पूर्व माशी का दिन आखो सी भरे सारस राय दिन झोलियां भरिया गईं तुहाडे उत्ते ही तुहाडे उत्ते ही रहमत सूरज की किरण जिथे जाएगी अंधेरे को दूर कर दी जाएगी गुरु की मेह जिथे जाएगी चोरियों पर तो आओ प्यारी आज संगत आप धन हो।
सर्वत्र माई साई जो अमृत वेली है।

संगत हो जाए। उदे गुणा ते मैं जिंदगी तोर लवा, मेरा मेल करा दे। बाबा दीप सिंह जी दे प्रतख दर्शन ते किते हो जान ते पता नहीं सारे भी जान के ना। हा मंगना साधु जन देव मिलाए, बाबा दीप सिंह दे गुणा वर्गे गुण पांच पैसे दस पैसे साढ़े च भी आ जाए।

ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं नाम रहो सब। माता जी चले गए, पिताजी चले गए, बाबा जी रहते। शस्त्र विद्या सीखण लग पे, गुरबाणी की विद्या सीखण लग पे। वेले बह के मैं रोटियां नहीं पाड़नी, होर भी कई कुछ

बाबा दीप सिंह जी संगत दे जूठे कौले माई दे पे थे। आज ये गुण ले जाना बाबा दीप सिंह हुण ते कौले माई जान। बाबा ही कोले माई दे पे कोला हाथ चे नाल नाल सिमरन नाल नाल कोला नाल नाल सिमरन नाल नाल कोला इन्नी क लिव लग के कोला माई दे पे के गुरु गोबिंद सिंह जी नू 10 मिंट हो गए कोल खड़िया पिछे ते बाबा जी का उधर लिव जदों सिंह नाल हुंदे सी गुरु गोबिंद सिंह बाबा जी जदों ध्यान वेख्या साहब खड़े ने ते कहंदे कौला हाथ विच ही है सवा नाल लिबड़िया हाथ भी लिबड़े ने सवा दे ते डंडौत करके मालक नूं कहंदे जी भुल हो गई आप जी खड़े ते मेरा ध्यान ही नहीं कि आप कोल खड़े बख्श लेना। गुरु गोबिंद सिंह महाराज दसना ते दूजे सिंघां नूं होणा कहंदे दीप सिंह कोले माई दा ते बाबा जी तुहाडी कृपा नाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज तुहाडी कृपा नाल ते तन गुरु गोबिंद सिंह कहंदे अज दीप सिंह एक गल दस।

सत्संग मिले सो तरिया, मेरे माधव जी सत्संग मिले सो तरिया, गंग बनारस हिंदुआ मुसलमाना मक्का काबा, कर कर बाबा गावी है बजल ताल मृदंग बाबा।

संगत कैसी जानी है। केड़ी संगत, कैसी संगत, केहो दी संगत। सत्संगत कैसी जानी है, जिथे एको नाम विखानी है। ओ संगत जिथे एको नाम दी आराधना हो रही, सारे एक नाम दे नाल जुड़े ने, ओ साध संगत। साध संगत मिल होए तराबा, ते संगत करन दे नाल वस्तु केड़ी मिलदी। बिसर गई सब तात पराई, इंसान कितनी भी कोशिश करे तात पराई नहीं छड़ सकता। तात पराई दा पाव है जलन, ईरखा, किसे नू वेख के जलना, तात पराई नहीं छड़दा। पर सैम आख देने जीव जदो संगत विच आ जांदा है ना, सब कुछ छड़ जांदा। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई। कितना संगत विच आउन दा लाभ है, जदो संगत विच आउंदा है तात पराई भुल जांदी। इत्थे ही बस नहीं, ना को बैरी नहीं बिगाना, वैरी भी सज्जन नजर आने लग पैंदा, दुश्मन भी मित्र लग पैंदा, क्योंकि संगत विच आ गए। ना को बैरी नहीं बिगाना, सगल संग हमको बने आई। ये प्राप्त किवें होया,

मत दी, क्योंकि गुरु की संगत विच आ गए। तो जब संगत विच आ गया है, साध संगत के बांस बै कल मल सब नसना, तब से ती रंग रातिया ताते गर्भ न गसना, साध संगत तर जाएगा। इस संगत विच आउण दे लाभ दसते साहब आखदे ने जीव।

0: संगत करया कर, संगत विच जाया कर। ते कबीर साहब ख्याल देंदे कहिंदे ने जीव संगत कर पर कैसी।
1: कबीर संगत करिए साध की,
0: किसी साध दी संगत करी, किसी चोर यार जिवारी शराबीए दी संगत ना कर लवी। साध संगत करी, चंगी संगत करी, किते पैड़ी संगत विच ना पै दई, क्योंकि संगत तारदी ते संगत ही डोबदी। ते जिहड़ा साध संगत विच आ मिलदा है ओ तर जांदा है। साध संगत